0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इमेजिन दिस, फुल ब्लोन झगड़े का सीन चल रहा है, लड़का चिल्ला रहा है, लड़की चिल्ला रही है, एंड सडनली इन द मिडल ऑफ द गाय स्क्रीमिंग द गर्ल सेज, ये न कटी पड़ी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू टू माय एक्स. हर बार जब हम झगड़ा करते थे, मस्त झगड़ा करते थे, ऐसा लगता था कि झांसी की रानी पार्ट टू मैं ही हूँ. लेकिन जब मैं झगड़ा करते करते मिड वे बोर हो जाती थी, तो आई यूज टू यूज दिस तमिल वर्ड न कटी पड़ी, विच मीन्स हग मी. और वो सडनली ऐसे ना फ्लमक्स हो जाता था कि अभी तो ये मुझसे हिंदी स्लैश पंजाबी स्लैश बिहारी में लड़ रही है, और अब ये तमिल क्यों बोल रही है. एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट दैट फ्रेज मेंट, क्योंकि मुझे एक ही तमिल का फ्रेज आता है, न कटी पड़ी, विच मीन्स हग मी बेबी. और वो बेचारा ना ऐसे पिघल जाता था कि मेरी मल्टी लिंग्वेज झांसी की रानी, तुझे प्यार करूं, तुझे हग करूं, तुझसे झगड़ा करूं, समझ ही नहीं आता तेरे साथ क्या क्या करूं. ऑन दैट नोट, अगर आप भी मेरी तरह एक बहुत ही शातिर लड़ाईबाज इंसान हो जो मिडल ऑफ द लड़ाई करते करते खुद ही बोर हो जाता है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. लेट्स टॉक अबाउट दिस बीमारी ऑफ योर्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochieI. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

गाना बजा दूं।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक, एज माय नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi, how are you?
1: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
3: Ah, totally.
1: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदी काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं? मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
3: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का relation है, हुँ. But somehow मेरा boyfriend अब further studies के लिए कैनेडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन, एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
1: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करते हैं?
3: नहीं, मतलब ही ट्रस्ट मी अ लॉट, सो दैट आई एम हैंगिंग आउट, सो या चल जाता है.
1: चल जाता है यार, अगर बंदा ट्रस्ट करे देन इट बिकम्स इजियर टू चीट. ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर?
3: एनीथिंग जो आपको पसंद है इस वक्त.
1: क्या बात कर रही है? अच्छा, मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा. हियर यू गो. Babe, you are absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब बॉयफ्रेंड कनाडा में, ही ट्रस्ट यू सो मच एंड यू आर लाइक हाँ तो ठीक है, ट्रस्ट को वीकेंड पे साइड पे रख देते, दैट डजंट काउंट ऑन वीकेंड्स, डज इट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट. देखो

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
5: Listener mein, back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये स्पाइडर वेब तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं. पुष्पा, आई बेट यू डिड नॉट नो दैट. कपल इयर्स अगो, एक्चुअली ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, आई वाज डेटिंग दिस गाय और हम ना जब भी घर पे हैंग करते थे हमारा बहुत झगड़ा होता था. एंड देन आई रियलाइज कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी देन काम करने वाली दीदी हिना दीदी वॉज अ टेरेबल काम करने वाला इंसान और वो जगह जगह मकड़ी के जाले छोड़ देती थी. नाउ यू विल वंडर कि इन दोनों चीजों का एक दूसरे से क्या लेना देना. लेना देना है मिलॉर्ड, क्योंकि फंक्शुई के हिसाब से अगर आपके घर में मकड़ी के जाले हैं दैट विल कीप द नेगेटिव एनर्जी ट्रैप्ड, इट विल मल्टीप्लाई इट एंड दैट विल रिजल्ट आपके रिलेशनशिप में झगड़े बढ़ने से. समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यार. तो बेसिकली स्पाइडर वेब्स हटाओ, रिलेशनशिप्स में झगड़े कम हो जाएंगे. मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: देखिए हम ऑलरेडी बहुत ही नर्वस हैं, हम अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और हम एक बहुत ही फैंसी कॉफी शॉप पर जा रहे हैं, लेकिन एक से दूसरी कॉफी का डिफरेंस नहीं पता है। जरा मदद करके बता दीजिए प्लीज।
2: रोशी के डीएम से,
1: दिस हैज टू बी द स्वीटेस्ट डीएम एनीवन हैज एवर सेंट मी। मोहित, आई एम टोटली गोइंग टू हेल्प यू फिगर आउट योर कॉफी गेम। अगर आप पहली बार एक बहुत ही फैंसी कॉफी शॉप पर अपनी बेब को लेकर जा रहे हो एंड यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज रियली इग्नोरेंट ऑफ कॉफीज, लेट मी जस्ट टेल यू मोटा मोटा। कैपेचिनो वो कॉफी होती है जिसमें स्टीम मिल्क होता है और थोड़ा सा ब्लैक कॉफी होता है, ठीक है? तो ज्यादा इसमें दूध होगा और एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो होगा। एस्प्रेसो है एक शॉट काली कॉफी। लाते जो है उसमें एस्प्रेसो है, लेकिन उसमें जो दूध की मात्रा है वो ज्यादा है। यूजुअली आइस लाते टेस्ट्स अ लॉट लाइक कोल्ड कॉफी, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। अगर आप मोका ऑर्डर कर रहे हैं तो मोका का मतलब है कि इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी होगा। तो कॉफी है, दूध है और चॉकलेट का फ्लेवर है। अमेरिकानो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है एस्प्रेसो का एक डार्क कॉफी का शॉट है और उसके ऊपर बहुत सारा गर्मा गर्म पानी है। और अगर आप आयरिश कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें विस्की भी होगी। सो इफ यू आर समवन हू इज अ टीटोटलर, आप आयरिश कॉफी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अगर आप फ्लैट वाइट ऑर्डर कर रहे हैं तो ये है, इसमें कॉफी है और कैपेचिनो के बनस्पत इसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें स्टीम मिल्क भी होता है और इसमें थोड़ा सा फोम भी होता है। तो आपके लिए बस इतना कॉफी का जानना इनफ है। आपकी स्माइल इतनी चार्मिंग लग रही थी मोहित, मैंने आपके डीपी में देखा है दैट वो लड़की
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: What happens जब आपकी शादी भी नहीं काम करती है और आपका उसके बाद वाला रिलेशनशिप भी नहीं. It's pretty heartbreaking and I think that's what's happening with Raj, जिसने मुझे मैसेज लिखकर भेजा. I'm just about to call him, but अगर आपकी जिंदगी में राज की तरह कोई भी प्रॉब्लम है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर राज है. हाय राज.
2: Hi.
1: कैसे हो आप?
2: As far as life is being concerned, it's being very puzzled. मैंने अपनी सारी स्टोरी ऑलमोस्ट आपको बताई दी.
1: हाँ, मैंने आपका जो इंस्टाग्राम पर पढ़ा था कि आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन हुआ 5.5 इयर्स से एंड अभी डिवोर्स हुआ ना आपका.
2: हाँ, जस्ट अभी मतलब रिसेंटली ऑन पेपर्स अभी हम स्लाइडली बिट जो प्रोसीडिंग्स हैं
1: right.
2: वो एज ऑन गॉन है. फिर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नेक्स्ट कमिंग मंथ मैं सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी.
1: अगले महीने आपका डिवोर्स हो,
2: मतलब एक लास्ट जो साइन रहता है
1: ऑफिशियली. हाँ, और
2: वो बस हो रहना.
1: और इस दौरान में यू हैव एक 8 साल की बेटी और इस 5.5 इयर्स ऑफ सेपरेशन में आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी. अच्छा, ये आपकी जो दोस्त अच्छी बनी एंड हुम यू इवेंचुअली फेल इन लव विद एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंड, ये जो आपकी दोस्त बनी थी, ये कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिली थी आपको या आपको इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे मिली थी?
2: नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं. एक्चुअली आई वाज यूज्ड टू गो इन माय बैंक, शी इज वर्किंग इन अ बैंक.
1: अच्छा.
2: और मेरा वो अकाउंट जनरली हैंडल करती थी, तो जनरल डिस्कशन करते करते वी हैड हम लोग अच्छे दोस्त बन गए. फिर दोस्ती बढ़ते गई. वो मेरे घर पे भी आई हुई है, मेरी फैमिली से भी मिली हुई है. मेरी डॉटर भी उसको अच्छी तरह से जानती है एंड शी यूज टू रिकॉग्नाइज कि हाँ, ये उसका नाम है. मैं अहमदाबाद गया हुआ था तो मैंने उससे बातचीत की कि यार देख, मुझे लाइक हो गया. तो बोले कि मैंने कभी इस चीज को लेकर थॉट वो लेके नहीं आई इस चीज को लेके. हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड और वी आई यूज टू कॉल हर बेस्टी. तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं सोच, कोई दिक्कत नहीं, यू टेक योर टाइम. देख, जहां तक मेरी डॉटर का इश है तो डॉटर मेरे साथ ही रहती है. सो ऐसी चीजें चलती रही. तो उसके बाद थोड़ी बहुत बीच में बातचीत हो रही थी हम लोगों की एंड हम जब भी पहले विश करते थे गुड मॉर्निंग, वी यूज टू से गुड मॉर्निंग बेस्टी आई लव यू एंड शी यूज टू गिव मी द सेम रिप्लाई. देन अभी सडनली लास्ट नवंबर से रोशी ये चीज हुई कि बहुत कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ चीज हो गया. भाई उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे हैं, ठीक है. बट कभी मूड खराब हो जाता था, कभी किसी चीज का रिप्लाई नहीं आता था. मैं पूछता रहता था कई बार, तो वो जवाब नहीं आता. तो फ्रस्ट्रेशन होती है. हम किसी से कई 10 बार फोन करे, उससे चीज कुछ पूछे, कोई जवाब नहीं आता. तो हमको लगता है कि क्या हम बेवकूफ है या हमारे पास हम वेले हैं. इन दिनों में तो उसने अपना जो नंबर था उसने नंबर भी बदल दिया. मुझे भी नहीं पता पड़ा.
1: राज, एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से द गर्ल इज गॉन. शी डज नॉट केयर फॉर यू. शी इज ट्राइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. वो आपको बताने की कोशिश करी कि आपके बिना कितनी खुश है. आप प्लीज मूव ऑन कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार इन स्पेशली इन इंडिया हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम अपने प्यार की रिस्पेक्ट ही भूल जाते हैं, अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं.
2: That's what I'm, taking this as a thing.
1: I think you should. And the fact of the matter is ki, okay, your marriage didn't work. Okay, this relationship didn't work. But iska ye matlab nahi hai ki aap baith ke us insaan ka intezar karenge jo aane ka intention hi nahi rakhta hai. Aage badho. Zindagi is very beautiful. Focus on your daughter. Aur jab pyar milna hoga na, Raj, it will walk right into exactly. To fir tab tak aap aur main to hain.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आपने कभी अपने पार्टनर के साथ गार्डनिंग ट्राई करी है? सो अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये ना गार्डनिंग कितना मैसी होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं एंड देन यू गेट ऑल स्वेटी और हर जगह मिट्टी मिट्टी लगी होती है, टिल आई एक्चुअली ट्राइड गार्डनिंग विद माई देन पार्टनर एंड हम दोनों के हाँ कपड़ों में मिट्टी लगी थी, मेरे तो नेल्स में भी मिट्टी घुस गई थी, बट हमने इतना हंसी मजाक किया एंड देन यू नो वी टुक टर्न्स टू टेक केयर ऑफ द प्लांट. एक हफ्ता वो मेरे साथ होता था प्लांट, एक हफ्ता उसके साथ होता था एंड दैट एक्चुअली टर्न्ड मी इनटू अ फुल टाइम गार्डनर जो मैं आज की डेट में हूँ. ना कि सिर्फ आपको ये कनेक्ट करता है विद द अर्थ, विद द फीलिंग ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ लव फॉर प्लांट्स एंड नेचर, लेकिन ऐसा करने से अगर आप एक एसेंस, ना कि सिर्फ आपको ये कनेक्ट करता है विद द अर्थ, विद द फीलिंग ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ लव फॉर प्लांट्स एंड नेचर, लेकिन ऐसा करने से अगर आप एक एसेंस

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हमारे घर में बचपन से एक जोक है कि रोशी के पास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हर पॉसिबल एडिशन ऑलरेडी है। नाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ रोमांटिक क्लासिक नॉवल और बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, तो तब से जब भी मुझे कहीं पर इसका एक वर्शन मिल जाता है जो मेरे पास नहीं है, सो द बुक रिमेन्स द सेम बट पब्लिशर्स बदलते हैं, सो द कवर काइंड ऑफ चेंजेस। तो मेरे पास 5 ऐसे हैं और क्योंकि करण इस बारे में हर बार जोक करता है मेरा भाई, One of my exes, when he found out that मुझे Pride and Prejudice इतनी बेहद पसंद है, मेरे birthday पर, he actually went to I think 5-6 पुरानी bookstores और उसमें एक बहुत ही vintage edition of Pride and Prejudice उसे मिला, जिसके उसने बहुत पैसे दिए, way more than एक करंट नॉर्मल बुक स्टोर में जो नया वर्शन होता उसके। ही रैप्ड इट अप इन न्यूज़पेपर, रोट अ लव पोयम मार्कर से ऑन दैट न्यूज़पेपर व्हिच ही रैप्ड इट इन एंड देन गेव इट टू मी, एंड आई कांट बिगिन टू टेल यू कि वो मेरे लिए कितना स्पेक्टेकुलर प्रेशियस बर्थडे प्रेजेंट है ऑफ ऑल टाइम्स। माई पॉइंट इज, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आर एन एविड रीडर, देन उनकी जो फेवरेट किताब है ना, उसका ही वर्शन फ्रॉम अ विंटेज स्टोर ढूंढने की कोशिश करो एंड यू विल बी अमेज्ड विद द वे दे

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक, एज माय नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi, how are you?
1: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
3: Totally.
1: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदी गंदी काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं? मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
3: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का relation है, हुँ. But somehow मेरा boyfriend अब further studies के लिए कनाडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन, एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
1: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग?

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

सुधांशु ने मुझे इतना क्यूट मैसेज लेकर भेजा फेसबुक पे. ही वॉज लाइक, आप हमेशा कहते रहते हो कि डेटिंग एप्स पर अच्छी सी अमेजिंग सी बायो लिखो और फिर आपको राइट स्वाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जिसे नहीं लिखना आता, मैं नहीं हूँ कॉपी राइटर, मुझसे दो शब्द नहीं लिखे जाते, क्या मुझे कभी राइट स्वाइप्स नहीं मिलेंगे? आई वॉज लाइक, सुधांशु सुधांशु, आई ऑलवेज हैव एन आंसर टू दीज क्वेश्चन. सो अगर आप अपना बायो नहीं लिख सकते हो बिकॉज जस्ट यू आर जस्ट चैलेंज्ड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, देन चार या उससे कम फोटोज में, यानी कि तीन या चार फोटोज में आपको अपनी पूरी स्टोरी कह देनी है. मतलब इफ यू हैव अ डॉग, देन आपकी फोटो विद योर डॉग. अगर आप गिटार बजाते हो तो अगली फोटो में आप और गिटार बजाते हुए. इफ यू डू कैरियोकी तो एक फोटो जिसमें आपने माइक पकड़ी हो. बेसिकली चार फोटोज में एक लड़की को समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द पैकेज दैट शी इज गेटिंग इफ शी राइट स्वाइप्स यू. तो अपने आप को समझो एक

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Hit gana sunna aasan hai. ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ, और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी. And we kickstart the countdown with gana number 20, Uncha Lamba Ka, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
4: Number 20.

0: फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने।
1: अरे
0: या फिर बाजीराव सिंघम, दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिल खान के शब्द, फ्रॉम दृश्यम द कंक्लूजन
2: नंबर 18।
3: दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12।
4: वैसे तो जमाने भर की

0: तमन्ना भाटिया,
1: वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम रामायण,
3: नंबर 11।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल यह है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations ko saath rakhna aur apni values ko compromise kiye bina unhe aaj ke cinema mein lekar aana. Shayad Suraj ji ki sabse progressive baat yahi hai ki unhone waqt ke saath apni values badalne se inkaar kar diya. Aur ab isi duniya mein melody lekar aa rahe hain Bollywood ke ultimate hit machine, the man who collaborated with Suraj Barjatya on Prem Ratan Dhan Payo, Himesh Reshamya. नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना? लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विथ इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी ना, उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें, इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो? ओहो, व्हाट अ प्राउड फीलिंग, है ना? पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना आप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर वन टू वन बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREY श्रेया विद लव माई हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पर लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम करके फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

10 सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी, एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की, एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ओ हो ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है ना, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिपसिंग करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो वो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिपसिंग करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आई, उनसे ये गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में, एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली। और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगी, श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु इज ऑल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वॉज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जिनका शायद पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, या फिर अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिनको वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उतर आए लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाते, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये दिल तो कभी करता होगा और सोचता होगा ना ऐसा।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल,
0: कैसे कैसे ख्याल आते हैं। आज ये गाना
1: बनाया गया है मेरे लिए।
0: करेक्ट, तो शायद कोई खास को ये गाना आज आपकी याद दिलाते हैं। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, विल सी यू टुमारो। और हाँ, फेसबुक इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। गुड नाइट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भाई बहन के बीच के डिस्प्यूट्स फैमिली इक्वेशन को इम्बैलेंस कर देते हैं तो उनसे बाहर निकलकर हार्मनी कैसे बनाएं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, हाउ आर यू?
3: आई एम वेरी वेरी नाइस। और हाल फिलहाल में मैं एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, वो देख रहा था, तो उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे सवाल नजर आया, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। वहाँ पे कमेंट्स भी बहुत सारे थे, बहुत वाद विवाद वहाँ पे छिड़ चुका था। तो एक मोहतरमा है, वो लिखती है कि मेरे माता पिता अपनी वसीयत के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। इस वक्त पता चला है कि वो घर मेरे छोटे भाई को देने का प्लान कर रहे हैं, और मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मेरा जो भाई है वो 32 साल का है और उसने अपनी पूरी अडल्ट लाइफ में बहुत सारी नौकरियां की हैं। जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि अनफेयर लगता है, तो मेरी माँ ने कहा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हम उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिम्मेदार होने की मुझे सजा मिल रही है। तो जो उनका सवाल है कि जब परिवार के फैसले अनफेयर लगे तब स्वार्थी या अनग्रेटफुल लगे बिना बात कैसे कही जाए, और क्या बड़ी बहन की भूमिका निभाना बंद करके अपने बारे में सोचना गलत है?
4: कई चीजों में एक ही सिचुएशन में कई सारे उसके सोल्यूशन हो सकते हैं
3: जी।
4: इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही चीज राइट है। तो कभी कभी लॉज तो बने होते हैं, और इस समय हमारे जो कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग जो आपकी वसीयत होती है वो दोनों को जाती है
3: जी।
4: भाई को भी जाती है, बहन को भी जाती है।
3: बट
4: एट द सेम टाइम अगर कोई विलिंगली पेरेंट किसी उस चाइल्ड को सपोर्ट करता है जिसको जरूरत है, और अगर ओल्डर सिबलिंग या यंगर सिबलिंग उससे कम्फर्टेबल है, तो उसमें हर्जा नहीं है। सी इनिशियली क्या होता था, जो वर्से का अधिकारी होता था वो
3: लड़का होता था।
4: बट द डॉटर वॉज ऑल्सो गिवन गिफ्ट, जिसको हमने बाद में डाउरी कहना शुरू कर दिया। दैट वॉज अ वेरी वेरी जेनरस गिफ्ट जो पेरेंट्स देते थे। देन वी सॉ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पर डॉटर या मैरिज होने के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, कोई सिचुएशन आ गई, डिवोर्स हुआ या पति मर गया या कुछ भी, देन लॉज केप्ट चेंजिंग कि वो भी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। नाउ इन दिस केस इट्स अ फैमिली थिंग। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो भी कोई हर्जा नहीं है। अगर उसमें ऐसा लगता है, सी दिस कम्स आउट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, कि अगर किसी दूसरे को उसकी जरूरत है और अगर हम उसको मदद करते हैं, मेरा वो यंगर या ओल्डर सिबलिंग है, तो उसमें भी कुछ हर्जा नहीं है। इट इज टोटली ऑन दैट पर्सन, गलत और सही नहीं है इसमें कुछ भी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Parents अपने बच्चों के साथ partial नहीं होते, बस उनका नजरिया अलग होता है। उस perspective को समझकर रिश्ते को कैसे safe रखें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जो सवाल है वो प्राइमरली इस बात पे नहीं इंकित कर रहा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, मैंने पूरी जिंदगी काम किया, और अगर वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं?
4: पेरेंट्स होते हैं, एज अ पेरेंट्स वो हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा दोनों बच्चे सेटल हो जाएं। दो हैं, चार है, छह है। आप पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे, कई बार पता है क्या होता है कि हर घर में हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए। पेरेंट्स कभी भी पार्शियल नहीं होना चाहते, पर हमेशा जो थोड़ा सा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अटेंशन उससे हट करके उस पर चला जाता है जो अपने पैरों पर अभी तक खड़ा नहीं हुआ या थोड़ा सा वीक है। इट कैन हैपन फिजिकल केसेस में भी ना, कई बार आप कई घरों में देखते हैं बच्चा फिजिकली वीक होता है,
3: उसको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है,
4: उसको अटेंशन की, लव की, कंपैशन की, सपोर्ट की जरूरत है। एज अ पेरेंट वो गलत नहीं है, वो चाहते हैं दोनों सेटल हो जाएं, ये अपने आप अगर सेटल हो गया इसको हम थोड़ी सी मदद कर दें, उनके पर्सपेक्टिव से वो रॉन्ग नहीं है। एज अ सिस्टर अगर आपको भी वो कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है कि नहीं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, भगवान का शुक्रिया है कि उसने मुझे ऐसी बुद्धि दी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, ऐसा परिवार दिया दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई कैन हेल्प अ फैमिली मेंबर, तो उसमें हर्जा तो नहीं है, आप सेवा भाव से भी कर सकते हैं। पर अगर वो चीज उनको नहीं आ रही है, देन आई फील नेगेटिव सोच करके अपने फैमिली मेंबर के प्रति इतना नेगेटिव सोचना या उसको रिजेक्ट करना या उससे हेटरेड पैदा हो जाना, इससे तो फिर मन की भावना शुभ रखना ज्यादा जरूरी है। बाहर अगर उनको अपना हिस्सा लेना है तो ले ले। जो रिश्ता होता है वो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पर एनर्जी आपकी कम्प्लीटली नेगेटिव है, एनर्जी में बहुत ज्यादा उसके प्रति गुस्सा है, नफरत है, और आपने वो हिस्सा दे भी दिया, वो बहुत अच्छा नहीं है। मन हमारा जो परिवार है उसके लिए मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, मन में बहुत प्यार होना चाहिए, मन में बहुत कंपैशन होना चाहिए। बाहर फिर जिसको जो ठीक लगता है कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द फर्स्ट इज कि उनका मन उसके प्रति बहुत बहुत स्नेह से भरा होना चाहिए, बाहर उनको जो ठीक लगता है वो कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स के लिए भी जरूरी होता है कि वो अपने बच्चों के बीच प्यार और सपोर्ट का सही बैलेंस बनाए। आइए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये लेकिन कई परिवारों में होता है, क्योंकि भाई बहनों के बीच में झगड़ा ही आधी बार इस बात का होता है कि पापा मम्मी किससे ज्यादा प्यार करते हैं या उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। ये तो चलिए प्रॉपर्टी का केस है, बट इसी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पे भाई बहनों के बीच में झगड़ा इस बात से होने लगता है, या भाई भाई के बीच में, बहनों बहनों के बीच में इसलिए होने लगता है कि आपको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये सही नहीं है, क्योंकि हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था। तो यहाँ पे इस बारे में बात नहीं हो रही है कि ये सही है गलत, हमको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने वो सारा चीज किया जो हमें करना चाहिए था और तुमने नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती?
4: गलती कुछ नहीं है, पेरेंट्स के भी क्या गलती है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि दोनों बच्चे हैं, दोनों सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, दोनों को एक जैसी पालना देते हैं, एक जैसी एजुकेशन देते हैं, कोशिश तो करते हैं ना। सर्कमस्टेंस भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। हर सोल फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली सेम नहीं होती है उसकी स्ट्रेंथ। आज आपके घर में अगर दो बच्चे हैं, वो दो आत्माएं हैं, उनकी फिजिकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग होने वाली है। जब कपैसिटी अलग है, सो एज अ पेरेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमेशा कमजोर को सहारा दिया जाता है। अगर कोई अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है तो उसमें हर्जा नहीं है, बट देन इफ यू फील दैट यू वर नॉट सपोर्टेड, आप उनसे बात करें। आई मीन आई फील वी हैव टू सी बोथ पर्सपेक्टिव। कई बार अंदर ये दर्द पकड़ के रखना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, ऐसे कई सारे घरों में हो जाता है। बड़ा बच्चा है, आई रिमेम्बर एक घर में बड़ा बच्चा बहुत जल्दी ही ऐसी फील्ड में निकल गया जब मदर को कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहना था। स्पोर्ट्स होता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नेशनल्स, इंटरनेशनल, एक पेरेंट को कॉन्स्टेंटली उसके साथ रहना पड़ा, कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ा। दूसरा पेरेंट बिजी था अर्न करने में, तो जो यंगर सिबलिंग था वो बहुत निग्लेक्टेड फील किया। एज अ पेरेंट वो कहते हैं कि हमें उस समय रियलाइज नहीं हुआ, हम तो एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे, उसका करियर बन रहा था, हमें लगा इसका भी उसके प्रति उतना ही प्यार है, पर कब वो निग्लेक्टेड हो गया तो पता नहीं चला। सो आई फील पेरेंट्स आल्सो हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल। आपको उस चीज को फील करना है कि अगर कहीं पर लग रहा है कि वो निग्लेक्ट हो रहा है, जितना आप बैलेंस कर सकते हैं करें। बाकी एज चिल्ड्रेन वी शुड सी देयर इंटेंशन। आप थोड़ा इंटेंट देखने की कोशिश करें, वो जो पेरेंट है उसके इंटेंशन में एक के प्रति ज्यादा प्यार, एक के प्रति कम प्यार, ऐसा नहीं है। लेकिन बस इंटेंट में ये है कि जो सेल्फ सफिशिएंट है वो तो है, जो नहीं है उसको हम जितना सहयोग दे सकें, जितना उसको हम हेल्प कर सकें कि वो भी अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकें। रिश्तों में भाव भावना देखनी होती है, सिर्फ बाहर आना, बाहर का ही ना देख करके, एक्शन ना देख करके। भाव माना
3: इंटेंट,
4: भावना माना फीलिंग, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप्स आर। इंटेंट क्या है, फीलिंग क्या है, सिमिलरली वो सिस्टर की फीलिंग क्या है। फीलिंग अगर प्योर है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, उस हिस्से की आपको भी जरूरत है, आपको भी चाहिए, ले लीजिए, इट इज ओके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अपनी बात रखते वक्त सेल्फिश लगे बिना अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: तो जब इंटेंट के बारे में और फीलिंग के बारे में वहां तक वो पहुंचे नहीं है, क्योंकि ये बहुत इवॉल्व्ड थॉट है कि भाई आप इस बारे में सोचिए, जब इंसान एक सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो सारी चीजें परे रख देता है, वो कहता नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ और मुझे ये। उनका सवाल ये है कि स्वार्थी फील हुए बिना, या ऐसा दूसरों को ना लगे मैं स्वार्थी हूँ और अनग्रेटफुल भी ना हूँ, किस तरह की बातचीत की जाए, किस तरह से ये अप्रोच किया जाए बात, वरना सामने वाला बोल सकता है यार तुम इतनी स्वार्थी कब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आई, अपने भाई को तुम सपोर्ट नहीं कर रही।
5: सी, हमें जो करना है वो हमें करना है, अगर हमें ठीक लग रहा है तो हमें करना है। अब आपको जो मुझे ठीक लग रहा है।
6: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्च।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनी बात क्लियरली रखना सेल्फिश होना नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है. आइए इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सपोर्ट ना करे चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है जब ऐसी डिमांड रखी जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि आप अपने अपना फायदा देख रहे हैं, आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं.
4: तो उनको रखने दीजिए ना, वो उनका पर्सपेक्टिव है. अगर उनको लगता है कि आप स्वार्थी हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है. दुनिया में लोगों को अपना पर्सपेक्टिव रखने का तो हक है ही ना. आपको अगर लगता है कि आप स्वार्थी नहीं है और ये आपका हक है या ये आपकी जरूरत है, ये आपके लिए इक्वालिटी का बेसिस है, एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट, आप उसमें आगे बढ़ते हैं. अच्छा। मुझे आप बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि आपने करी हो और सारी की सारी दुनिया उसको अप्रूवल दे?
3: ऐसा नहीं होता.
4: आज आप जो कर रहे हैं, चार लोग ये भी कहेंगे अच्छा कि आप अपने हक के लिए लड़े, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए. चार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे इतने स्वार्थी हैं, ये तो पहले ही वेल ऑफ थे, वो नहीं था, दे भी दिया तो क्या हर्जा था, इसमें कौन सी ऐसी बात थी. एंड बोथ आर करेक्ट. जैसे पर्सपेक्टिव है, जैसे ये बॉटल है, आप वहां से देखेंगे तो ये आपको
3: सफेद लग रहा है,
4: सफेद लग रहा है. मैं यहाँ से देखती हूँ तो ग्रीन लग रहा है. अब कौन राइट है?
3: दोनों ही राइट है.
4: सो मेनी केसेस, यही तो लाइफ है ना. लाइफ इज ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब हम आर्ग्यू तो कर सकते हैं, और मैं ये भी चाहूंगी, बस ये मैं चाहना है, मेरी चाहना है कि नहीं, आपको ग्रीन दिखना चाहिए. आपको ग्रीन दिखना चाहिए. आई विल फील कंफर्टेबल अगर आपको ग्रीन दिखे, पर आपको नहीं दिखेगा. आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा. मुझे ग्रीन दिखेगा, आई विल जस्ट हैव टू ट्रस्ट यू कि मे बी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट इज ट्रांसपेरेंट. सो सिमिलरली इन लाइफ पीपल आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. वो बनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, उनके एनवायरमेंट, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके जो कंपनी है उससे उनका पर्सपेक्टिव बनता है. देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. अगर वो अपना हिस्सा लेते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई उनको अनग्रेटफुल कहता है तो वो भी गलत नहीं है. उसको ऐसा लगता है, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर आप वेल ऑफ हैं और आप अगर अपने सिबलिंग को सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या हर्जा है, हमें तो गिविंग होना चाहिए. हम तो चैरिटी करके उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जिनको हम जानते नहीं है. तो ये तो आपका अपना परिवार है, अगर आपने इनको सपोर्ट किया तो क्या हो गया? तो कौन गलत है इसमें? इससे जो आपको कम्फर्टेबल लगता है आप वो करिए, लेकिन कुछ भी आपको उस चीज पर विश्वास होना चाहिए, आपको उस चीज के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए. फिर आप कहें कि सब उसको सपोर्ट करें और सब उस चीज को अप्रूव करें, वो नहीं हो सकता है कभी भी. एंड देन इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा है कि वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है
3: जी.
4: तो फिर उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एंड हैज टू कम टू टर्म्स विद व्हाट शी इज डिसाइडिंग टू फाइनली डू.
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चैरिटी करने से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना क्यों जरूरी होता है, आइए इस बैलेंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप बात कर रही थी कि कभी कभी बहुत सेल्फलेसली भी कोई दे देता है, और ऐसे ही मैं अपने एक कॉलीग से और दोस्त से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन थी और उन्होंने बहुत ही सरल मन से उन्होंने वो जमीन जो है करीब 50-60 एकड़ की थी उन्होंने दान कर दी, क्योंकि वहां पे कोई धर्मशाला बनने वाला था या कोई नेक कार्य के लिए वो काम यूज होने वाला था, तो उन्होंने दे दी। और फिर बिल्कुल बिना किसी चीज के, कोई सामान नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, वो आके अपनी जगह पे सेटल हो गए। तो उन्होंने बहुत नेक काम किया, लेकिन उनका पूरा परिवार जो है वो उन्हें इस बात का दोष देता है कि भाई आपके कारण हम तकलीफ में जी रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: सी, एज अ पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ करके भी अगर हम चैरिटी करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन उनको सपोर्ट करने के बाद, उनको सेट करने के बाद अगर हम कुछ चैरिटी करना चाहते हैं तो उसमें हर्जा नहीं
3: तो ठीक है।
4: इनफैक्ट बच्चों को भी छुट्टी देनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा दिया, बच्चे वेल ऑफ है, दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव, उन्होंने आपको पढ़ा दिया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, यू अर्निंग वेरी वेल, देन एक्चुअली में एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे को अपने पेरेंट्स को कहना चाहिए ये आपका है,
3: आपको जो मर्जी,
4: आपको जो करना है आप कर सकते हैं। कई बार हमारी भी ग्रीड इतनी होती है
3: कि ये भी हमें चाहिए,
4: सब कुछ ही हमें चाहिए
3: जी।
4: है तो कुछ नहीं, ग्रीड ही है। अब क्यों दान का कल्चर तो भारत में शुरू से ही चला आता है, क्योंकि जो भी आपने कमाया है वो यहीं रह जाता है, भले आपने अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो चीज आप दान करते हैं वो पुण्य बन जाता है। चाहे आप धन दान करते हैं, समय, टैलेंट, स्किल, शक्ति, अनुभव, जब आप दान करते हैं, आप डोनेट करते हैं, वो पुण्य कर्म बन जाता है
3: और वो हिसाब आपके साथ जाता है।
4: आपके साथ तो सिर्फ कर्म ही जाना है, आपके साथ तो कर्मों का ही हिसाब किताब जाएगा ना। अगर कोई धर्मशाला बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, तो फिर कहा जाता है कि अगर इसने कॉलेज बनाया तो अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई मिलेगी। होता है ऐसा, कुछ तो मिलेगा ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ कर रहे हैं तो उसका रिटर्न इस बर्थ में, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में तो आना ही है। इसीलिए जन्म होते ही किसी का अलग अलग है ना सब। अगर आप जन्म देके किसी का महल में है, किसी को इतनी अच्छी एजुकेशन है, किसी को इतना अच्छी हेल्थ है, सेम तो नहीं है सबका। तो कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो जो आपने दान किया वो श्रेष्ठ कर्म है। इट कुड बी इन एनी फॉर्म। आप स्किल भी कर रहे हैं, आप वाणी से कर रहे हैं, जैसे दान भी क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन
3: जी।
4: ये अलग अलग तरीके हैं। आप तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। मन से दान करना क्या होता है, आप अगर हरेक के लिए अच्छा सोचते हैं, हरेक के लिए शुभ भावना रखते हैं,
3: वो भी एक तरह का दान है।
4: 100%।
3: अरे वाह,
4: ये दान ही तो है, और ये बहुत मुश्किल दान है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: सिस्टर, महेश बजाज जी लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है और अगर होता है तो क्यों होता है?
5: लव एट फर्स्ट साइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कई बार हम कहते हैं ना मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। होता क्या है कि जब आप किसी को मिलते हैं और आपको लगता है यही है, आप उनको पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं।
4: अच्छा, इसमें भी कोई पुराना कनेक्शन है?
5: 100% कनेक्शन है, तभी वो एनर्जी एकदम एक्सचेंज होती है और आपको लगता है यही है। ये कई चीजों में होता है। मनाजर कोई भी व्यक्ति, कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पहले आए हुए,
4: पहले आ चुके हैं, देजा वो कहते
5: हैं। हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है हम इनसे पहले मिले हुए हैं। हम मिले हुए होते हैं। हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, और कार्मिक अकाउंट का मतलब बुरा ही नहीं होता। कार्मिक अकाउंट किसी से हमें बहुत सुख मिलना होता है,
4: हो सकता है
5: किसी से हो सकता है कि हमारा कुछ दुख भी मिलना हो, पर वो एकदम लगता है यही है। अब कॉस्ट्यूम बदल गया पर सोल वही है, तो वो सोल के नजदीक आते ही एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है, और इसीलिए हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, और फिर हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी रिश्ता है, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels, best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, ये अनोनमस है। पूछते हैं कि जब भगवान पर भरोसा ही हिलने लगे और कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करें?
3: भरोसा हमारा तब हिलता है जब कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा होती है। हम बहुत उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमें लगता है हो जाना चाहिए। कभी कभी जब हमारे अनुसार नहीं होता लाइफ में, तब भरोसा हिलता है, हमें लगता है शायद भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत किया। एक्चुअली में ये रियलाइजेशन होना कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान दो चीजें, पहला सही गलत कर्म की पहचान देता है। उसका जो काम है, जब हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है
2: जी।
3: और दूसरा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे हमें शक्ति मिलती है कि अगर हमारे से कोई गलत कर्म हो भी गया है, आज या गलत आज उसका कॉन्सिक्वेंस लौट कर आए, तो हम उसको फेस कर सके, हम उसमें हिले नहीं, हम स्टेबिलिटी से उसको स्वीकार कर सके और उसको फेस कर सके। पर हम परमात्मा से शक्ति नहीं मांगते, उससे जुड़ करके शक्ति नहीं लेते कि हम इस चीज का सामना कर सके। हम तो उससे नाराज हो जाते हैं कि ये मेरे सामने आया ही क्यों, ये बात ही क्यों आई, आपने ये बात क्यों भेजी। तो कई बार क्लैरिटी ना होने के कारण हमारा भरोसा हिल जाता है। बाकी वैसे जो परमात्मा को समझता है, किसी ने भी अगर उसका अनुभव किया है, तो वो आपको यही बताएगा कि कितना वो रहम का सागर है, कितना प्यार का सागर है, कितना ज्ञान का सागर है। और वो तो चाहता ही है कि हर एक को इतनी शक्ति मिले कि उसके जीवन में मेहनत नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, बहुत आराम से बेफिक्र बादशाह होकर के वो अपना जीवन क्रॉस कर सके।
2: स्टीवन फर्टिक नाम के एक अमेरिकन पास्टर हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और एलिवेशन चर्च नाम का जो चर्च हो उनके फाउंडर हुए हैं। उन्होंने बहुत कमाल की एक बात कही जो मुझे इस संदर्भ में बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके प्रतीक्षा करने से भी कठिन काम ये है कि यही इच्छा करना कि काश हमने ऐसा किया होता। ज्यादातर हम प्रतीक्षा ही नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं अपनी कामना करके, बस हमको लगता अभी हो जाना चाहिए। बहुत कमाल की छोटी सी बात है, लेकिन कमाल की बात वो कहते हैं। और आप वैसे भी कह रही हैं कि वो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देता है, बाकी हमें ही करना है।
3: हाँ, मैंने परमात्मा सबके लिए अगर कर दे तो परफेक्ट करेगा ना।
2: सही बात है।
3: जैसे एज अ पेरेंट, आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, फिर उसके कर्म से उसकी डेस्टिनी बनती है। गाइड करने के बाद भी बच्चा कई बार आपका कहना नहीं मानता, आप देख भी रहे होते हैं कि ये अपनी तकदीर को लकीर लगा रहा है, पर तो भी आप क्या कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा भी पढ़ा सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है, पावर दे सकता है, करना तो आपको ही है ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: पता है, कुछ कुछ मॉर्निंग्स में कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ मॉर्निंग्स में यू नीड अ थेरेपिस्ट। एंड देन कुछ मॉर्निंग्स ऐसी होती है जहां पर टेक्निकली तुम्हें एक शो की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये वही शो है जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स ऑफिशियली ऑन। मेरा नाम है प्रिसिला एंड लिसन, वेदर यू जस्ट वोक अप या फिर फैबुलस एंड फुली फंक्शनिंग हो ऑलरेडी, या फिर यू आर करंटली स्टेयरिंग एट योर कॉफी लाइक प्लीज डू द जॉब टुडे फॉर मी, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू मोर आवर्स, because this is your little slice of home right here in the middle of your American morning. थोड़ा थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सारे यार सेम टू सेम ब्रो ये सब करने वाले हैं, and obviously enough मिर्चीदार music to make that commute feel less commute and more like a mini dance floor. So buckle up, quite literally my desi fam, and आज का morning जो है वो शुरू हो चुका है। I've got music, मस्ती, मिर्ची and me बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी अपडेट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ सुनने वाले हूँ। एंड हे, डोंट जस्ट लिसन टू मी, टॉक बैक, व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग इन योर मॉर्निंग एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और अब चला दे कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर दिस डे दैट ईयर. आज है सितंबर 30. बैक इन 1791 मोजार्ट फाइनल ओपेरा द मैजिक फ्लूट प्रीमियर्ड इन वियना. फास्ट फॉरवर्ड टू 1935, बोल्डर डैम, लेटर रीनेम्ड एज द हूवर डैम, वाज ऑफिशियली डेडिकेटेड ऑन द नेवाडा अरिजोना बॉर्डर. बेसिकली अमेरिका ने कहा पानी, लेट्स बिल्ड अ मैसिव वॉल फॉर इट. 1946 द नूर्नबर्ग ट्रायल्स डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट, सेंटेंसिंग लीडिंग नाज़ी फिगर्स फॉर वॉर क्राइम्स. 1949 May, the Berlin airlift officially ended after 15 months of supplying West Berlin during the blockade. And 1954 May, the USS Nautilus was commissioned, the world's first nuclear-powered submarine. And finally, 1966 May, Botswana became independent from the United Kingdom. And while we are making history today, come make some radio history with me too. Find me on Instagram and X. My handle is Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033 6 4 7 2 double 4. Stay tuned and stay hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: With Priscilla, it's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब पता करते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है. वेदरवाइज राइट नाउ इट्स अराउंड 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड बिकॉज ऑफ द वेस्ट साउथ वेस्ट ब्रीज इट्स फीलिंग क्लोजर टू 56 डिग्रीज फारेनहाइट. सो हाँ, मॉर्निंग कम्यूट के लिए हल्का सा जैकेट वाला मोमेंट हो सकता है. एंड एज वी मूव इन टू द डे एक्सपेक्ट पार्टली क्लाउडी स्काईज अराउंड 9 AM एंड बाय लेट मॉर्निंग क्लाउड्स विल बी टेकिंग ओवर एंड मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी. बट गुड न्यूज ये है कि रेन का ड्रामा ऑलमोस्ट जीरो है. देयर इज ओनली अबाउट 10% चांस ऑफ रेन एंड प्रेसिपिटेशन ओवर द लास्ट 24 आवर्स 0 millimeters और नेक्स्ट 24 आवर्स आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी जीरो. मतलब कि आज अम्ब्रेला को छुट्टी मिल सकती है. टेम्परेचर्स क्लाइम टू अराउंड 75 डिग्रीज फारेनहाइट विद अ लो टुनाइट नियर 57 डिग्रीज फारेनहाइट और ह्यूमिडिटी जो है इट विल बी अराउंड 74% ड्यूरिंग द डे एंड कुड राइज अप टू 90% ओवरनाइट. सो हेयर फ्रिज जो है उसका ऑफिशियल वार्निंग मैंने दे दिया है तुम्हें. विंड स्टे फेयरली लाइट at around 5 miles per hour today and tonight we are looking at mostly cloudy to overcast skies. So aaj ke din weather ka mood jo hai na wo hai comfortable cloudy and comparatively calm. Perfect weather for that hot chai and a little bit Bollywood ke mirchidar bangers. Bahar nikloge to SPF 50 plus laga kar jana. Keep yourself hydrated and mirchi ki vibes barkarar rakho. Main hu Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse. Mirchi Pris is my handle on Instagram and X and WhatsApp or 9033 mirchi is my number. That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले, अ फ्लाई दुबई फ्लाई ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू टेल अवीव मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन सऊदी अरेबिया आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ अ वायलेंट ऑल्टरकेशन बिटवीन द पायलट्स। द प्लेन रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड अराउंड 17,400 फीट इन जस्ट 2 मिनट्स बिफोर द सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट हैपेंड। रिपोर्ट्स से एवरीवन ऑन बोर्ड इज सेफ। नंबर टू पर, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम हॉलीवुड। एक्टर चैड लो एंड किम पेंटर हैव अनाउंस्ड द डेथ ऑफ देयर 13-year-old डॉटर Fiona. The family has asked for privacy and also urged anyone struggling with mental health to reach out for support. If you or someone you know is in crisis in the US, you can call or text 988 for the suicide and crisis lifeline. And lastly, a new street cleaning machine was introduced to collect roadside litter in Gurgaon in India, but a viral video showed a worker manually operating its suction pipe to pick up individual pieces of garbage. And naturally, the internet questioned, where is the automation actually? The civic body says the machines are part of its mechanized street cleaning efforts. And that's your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 90 double 3 6 4 7 2 double 4. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Na vijet bala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट,
2: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइए।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूजडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूजडे किसे कितने बजे सर, ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और देसी स्पोर्ट्स फैंस, फोन को साइड में रखो क्योंकि हम बात करने वाले हैं मेडल्स की।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: एशियन गेम्स में इंडिया इज मेकिंग सम सीरियस नॉइज इन आईची नागोया। डे 10 के बाद इंडिया के अकाउंट में 52 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं एंड 25 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एंड दैट टेक्स अस टू द 10th प्लेस ऑन द मेडल टेबल। अभी फिलहाल गेम्स ऑन गोइंग है और इंडिया ऑलरेडी हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, मतलब कि मेडल कवर्ड, अभी और स्पेस बनाना बाकी है। और कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स भी बने हैं। नीरू डांडा, जैसे कि मैंने कल बताया था, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन इंडिविजुअल वुमेन्स ट्रैप विद एन एशियन रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 28। मिक्स्ड 4x100 रिले टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है 41.06 सेकंड्स में, अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट में बारिश ने क्वार्टर फाइनल्स को लिटरली वॉश आउट कर दिया, पर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेमीज में पहुंच चुके हैं। इंडिया फेसेस श्रीलंका टुमारो। एंड रेसलिंग में सुनील कुमार ने 87 किलोज में ब्रॉन्ज जीत कर कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स मेडल नंबर 2 कर दिया है। एंड यस, मेडल्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं एंड हम डायस्पोरा वाले जो है ना, सुबह सुबह स्टेटिस्टिक्स के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं। और अगर तुम मुझसे इमोशनली अटैच नहीं हुए हो अभी तक, तो क्या कर रहे हो यार। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड बर्थडे पार्टी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, क्योंकि आज सितंबर 30th को जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उनको बताना है मुझे कि आज तुम्हारे साथ कौन कौन अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट द गोल्डन वॉइस फ्रॉम इंडिया, शान एंड बंगाली सिनेमा के सुपर स्टार प्रोशनजीत चैटर्जी, एंड ज्वाइनिंग देम एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर, एक्ट्रेस श्वेता भारद्वाज एंड पैरालंपिक चैंपियन दीपा मलिक। मतलब की बर्थडे केक का साइज जो है वो छोटा हुआ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आज की गेस्ट लिस्ट काफी ह्यूज है। एंड इंटरनेशनली वी गॉट मोनिका ब्लूची, एक्ट्रेस मैरियो कोतियार एंड फ्रान ड्रेशर फ्रॉम द नानी, किरण कल्किन फ्रॉम सक्सेशन, सिंगर टी पेन एंड डांसर एक्ट्रेस मैडी जीगलर एंड एज्रा मिलर, ये सारे के सारे हैं सितंबर 30th के बेबीज। सो बर्थडे बेबीज, आज यू आर नॉट अलाउड टू से मेरा बर्थडे तो बस नॉर्मल सा डे है, बिकॉज यू गॉट सम प्रीटी अमेजिंग नेम्स विद यू। सो विश यू हैप्पीएस्ट बर्थडे, खाओ पियो ऐश करो, केक बांटो, केक खिलाओ, और मुझे अपने बर्थडे पिक्चर्स भेज सकते हो तुम। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। ऑल्सो सेंड मी योर शाउट आउट्स हियर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट.
2: Rajwells.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,215. $4,215 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आने वाली पुष्य नक्षत्र धनतेरस दिवाली के समय गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं उससे पहले आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आज ज्वेलरी अप्रूव होने पे गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ, गोल्ड का प्राइस लॉक्ड, 9 इंस्टॉलमेंट्स में सेम प्राइस पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाएगी और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलेंगे बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट. सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मेरे साथ रहो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Welcome to the last hour of Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डायरेक्टिंग द यूएस गवर्नमेंट टू यूज सुपर इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एसआई इंस्टेड ऑफ एआई. दिस विल बी डन इन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस वेयर लीगली परमिटेड. और इलॉन मस्क ने इवेंट में गलती से फिर एआई बोल दिया बिफोर करेक्टिंग हिमसेल्फ टू एसआई. ट्रंप लाफ्ड एट द स्लिप अप. नंबर टू पर रिपोर्ट्स से रशिया इज यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड टेलीग्राम टू रिक्रूट सम अमेरिकन्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज linked to the war in Ukraine. Ukrainian officials have said at least 18 Americans have joined, with reports of signing bonuses around $26,000. These are reported claims, and recruitment and participation details remain a matter of ongoing reporting. And lastly, a viral video from Muzaffarpur, India shows moviegoers removing their footwear before entering a theater to watch The One. Starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, the film's Chhath Puja sequence have been getting attention. Tension and viewers apparently took the festive spirit right to the theater entrance. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hu Priscilla tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci.
1: Scabana, scabana, scabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
3: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
2: लास्ट। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
0: सेंट।
3: सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है पता करने की कि आज का दिन कैसा जाने वाला है।
2: मिर्ची राशि जोन,
1: इट इज यानी कि मेष राशि। प्रॉमिस का लोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको डिलीवर भी करना होता है यार। वर्क में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लेकिन इट्स गोना बी वर्थ इट। लकी कलर इज फायर इंजन रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज प्रैक्टिकल चॉइसेस का दिन है। कम्फर्ट जोन में घुसने से पहले अनफिनिश्ड बिजनेस को निपटाओ। पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब पेंडिंग काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, एनर्जी बहुत है, बस एक्शन भी होनी चाहिए, गोल्स पे फोकस करो, जल्दी जल्दी में डिसीजंस मत लो। प्रोफेशनल काम में कंसंट्रेशन इज योर सुपर पावर टुडे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, एंथुजियाज्म हायर है। शॉर्ट ट्रिप या टीम के साथ कोलैबोरेशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बेसिकली सोलो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, टीम को भी स्क्रीन प्ले में पूरी तरह शामिल करो। लकी कलर इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, करेज और डायनामिज्म फुल पावर पे है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहना। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस वो आज बिना इनविटेशन के आ सकते हैं, सो बी अवेयर। लकी कलर इज सनफ्लावर येलो, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस भी राइजिंग है और सोशल स्टैंडिंग को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को नॉट टुडे सैटर्न बोलकर हटा देना साइड में। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1। अब बची बाकी की 6 राशियां, वो लेकर आती हूं थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेलर्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 एफएम एंड 103.3 एफएम एचडी2। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, and it's time for राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करना है। फाइनेंशियल डिसीजंस में इम्पल्सिव मत होना और अपने आइडियाज प्रेजेंट करते वक्त कॉन्फिडेंस जो है फुल वॉल्यूम पर रखो। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटर अर्निंग्स इम्प्रूव हो सकती है और करियर में प्रोग्रेस के साइंस है। प्रोजेक्ट्स को कामली रिव्यू करो, पेशेंस रखो, पैनिक नहीं। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ऑर्गेनाइजेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड टुडे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज हार्ड वर्क से रिवॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बेसिकली लिंक्डइन वाला वर्जन ऑफ यू नीड्स टू वेक अप एंड गेट टू वर्क। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 4। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फाइनेंशियल गेन्स और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से गुड वाइब्स आ रही है। जो टास्क पोस्टपोन किए थे उनको कॉन्फिडेंस के साथ रिस्टार्ट करो, कल करेंगे डिपार्टमेंट आज बंद है। लकी कलर इज कॉपर, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पेशेंस, प्लानिंग और हेल्थ, तीन वर्ड्स याद रखो। आज न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो, हर शाइनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 13। पाइसीज यानी मेन राशि, करियर डायरेक्शन में शिफ्ट आ सकता है और करेज लॉक होगा। इम्पोर्टेंट पेंडिंग ड्राफ्ट्स भेजने हैं, डिसीजंस लेने हैं, आज सेंड का बटन दबाओ और उससे दोस्ती कर लो। लकी कलर इज प्लम पर्पल, लकी नंबर इज 10। एंड देयर यू हैव इट, राशि जोन हुआ खत्म, लेकिन मिर्ची मॉर्निंग्स अभी जारी है और अब मिर्चीदार गानों की बारी है। वाह क्या राइम किया मैंने। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बस अब एक लास्ट अपडेट बची है बिफोर आई लेट यू गो। और विराट कोहली के फैंस अपने कान खोलकर वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना, क्योंकि किंग ने रैंकिंग्स में फिर से एंट्री मार दी है। एंड विद दैट मिर्ची मॉर्निंग्स अब ऑफिशियली रैप अप हो रहा है। लेकिन जाने से पहले पूरी खबर तो बताकर जाऊं। विराट कोहली इज नाउ द वर्ल्ड्स नंबर 2 ओडीआई बैटर आफ्टर स्मैशिंग हिज 55th ओडीआई 100 अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। विराट हैज जंप्ड वन स्पॉट इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। ही इज सिटिंग ऑन 796 रेटिंग पॉइंट्स, जस्ट 20 पॉइंट्स बिहाइंड नंबर 1, दैट इज शुभमन गिल। मतलब की कॉम्पिटिशन जो है घर का ही है, एक तरफ किंग है, दूसरी तरफ हमारा गिल है। एंड ऑनेस्टली 55 ओडीआई 100, भाई तुम लोग बर्थडे पे 55 कैंडल देखकर टायर्ड हो जाते हो, लेकिन विराट जो है वो 55वां 100 मारकर रैंकिंग्स में जंप कर रहे हैं। सो दैट्स योर लिटिल स्पोर्ट्स अपडेट बिफोर वी साइन ऑफ। ऑल द विराट फैंस कांग्रेचुलेशंस, एंड ऑल दोस हु डोंट लाइक विराट, व्हाई डोंट यू लाइक विराट? थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी, बोले तो प्रिसिला, दिस मॉर्निंग फॉर लव्स, फॉर म्यूजिक, फॉर मिर्ची एंड फॉर मस्ती। सुनते रहो, सेम टाइम ट्यून इन करो। रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में।

कहते हैं कि दिल से चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक चीज नहीं हो रही है। मैं फोन छोड़ने की कोशिश करता हूँ रात को सोने से एक घंटे पहले। आई हैव रेड इट समवेयर कि रात को सोने से एक घंटे पहले तक फोन नहीं चलाना चाहिए तो अच्छी नींद आती है। इट इज गुड फॉर बॉडी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और ये आई नो मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, बट इन केस समहाउ इफ यू हैव फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस देन डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। कम देयर, लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये एक चीज दिल से चाहने के बाद भी नहीं हो रही है। फिलहाल दिल से मैं जो जो चाहता हूँ उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। गानों के उस पार आ रहा हूँ, ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
2: है। तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा।
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, कभी लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
2: अब नवीद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी, उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार। इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं बैठी, नहीं बात है ना, कोई बात नहीं। इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं। आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं। बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिसेंटली ओटीटी पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मुसाफिर कैफे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट आल्सो। और अगर आप भी मोस्ट ऑफ द पीपल हो देन कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इनफैक्ट अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आपके लिए डबल अच्छी खबर है। विक्रांत मैसी जो कि इस सीरीज में लीड एक्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस करा कुछ टाइम पहले कि वो खुद के मुसाफिर कैफेज खोल रहे हैं। यस दिस इज ट्रू। मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। ये कैफेज एक हिमाचल में होगा, एक उत्तराखंड में होगा, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं ऑलरेडी। ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी होममेड स्टोरी से टाइड अप है। ये कैफेज का जो लुक होगा वो रिक्रिएट करेगा एग्जैक्टली वही जो आपने सीरीज में देखा, रस्टिक सा, कोजी सा, एकदम फिक्शनल जैसे कैफे हमने देखा था। यहाँ पे हर लोकेशन में यानी कि इन दोनों कैफेज में 20 रूम्स ईच होंगे जहां पे आर्टिस्ट आए, रहें, जो भी उनका काम करना है करें। बेसिकली अगर आप वो स्लो वेकेशन पसंद करते हो ना कि पहाड़ों में जाएं, कुछ दिन रह कर आएं, वहीं से काम कर लेंगे, देन दिस इज द वन फॉर यू। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये तो आई थिंक सबसे पहले जो लोग एक्सप्लोर करेंगे उनमें से मैं भी होने वाला हूँ, बट आई वुड लव इट। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो। बाकी अब कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है। इट्स हॉट।
1: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेलर्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हैव यू एवर फेल्ट कि आपको आपके काम के प्रेस
1: न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हैव यू एवर फेल्ट कि आपको आपके काम के प्रेशर की वजह से

0: वरना कैसे जिएगा ये जीवन। लेकिन एक महिला जिन्होंने इंस्पायर कर दिया होगा काफी सारे लोगों को, 30 ईयर ओल्ड ये महिला यूके में रहती हैं, एक हाई पेइंग करियर था इनका एज अ क्रिमिनल लॉयर, शी यूज्ड टू अर्न अ लॉट एंड शी जस्ट लेफ्ट हर जॉब डॉग्स को वॉक कराने के लिए। नाउ शी अर्न्स 50,000 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से पर डे एंड शी इज वेरी हैप्पी। शी सेज कि अब मुझे लगता है कि मैं 30 साल की हूं, अदरवाइज मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्यादा ईयर्स की हूं। भाई ये सब पढ़ने के बाद मैंने अपने डॉग की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों की आंखें मिली और फिर वो मुस्कुरा कर चला गया। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉग्स भी मुस्कुरा सकते हैं अगर उनको सही में कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो। उसको मेरा दुख इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं भी कोशिश करूंगा। आई मीन वी कैन डू इट। अगर हमें उतना मटेरियलिज्म नहीं चाहिए ना तो हम भी अपनी जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं, सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। अगर आपको कुछ बात करनी है इस बारे में देन इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। आज वो करते हैं बात, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

मिस्ट्री थ्रिलर्स एक ऐसा जॉनरा है जो मोस्ट ऑफ द लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के पांच का पंच में पांच ऐसी मिस्टीरियस थ्रिलर मूवीज जो देख के मजा आ जाए, बिकॉज एक्चुअली बॉलीवुड इज गुड एट इट. स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है तलाश, द आंसर लाइज विद इन. 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग आमिर खान एंड करीना कपूर खान, डायरेक्टेड बाय रीमा कागती, जिसमें इंस्पेक्टर शेखावत और उनकी वाइफ के बेटे की डेथ हो चुकी है. वाइफ इज स्ट्रगलिंग जबकि इंस्पेक्टर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है एक एक्टर की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में. मूवी का एंड इतना अनएक्सपेक्टेड है कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था, एंड हेंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज शोन बाय बॉलीवुड. सेकेंड यानी कि फोर्थ नंबर पर आती है तलवार मूवी, 2015 में आई, स्टारिंग इरफान खान, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, बेस्ड ऑन द इन्फेमस डबल मर्डर केस ऑफ नोएडा. इस मूवी ने एग्जैक्टली वही दिखाया जो हुआ था, यानी एंड में केस आज तक अनसॉल्व्ड है, एनहेंस इस केस को बंद कर दिया गया था. लेकिन अनसॉल्व्ड क्यों है ये आपको मूवी देखकर समझ में आता है. प्लस हु डजंट वांट टू वॉच अ गुड इरफान खान मूवी एनीवेज यार, सो गो एंड वॉच इट इफ You have not watched it yet. इसके अलावा बाकी की तीन मूवीज गानों के उस पार आ रही हैं. इसके बीच में अगर आप भी कुछ मिस्ट्री थ्रिलर्स बताना चाहते हो बॉलीवुड में, या गेस करना चाहते हो अगली थ्री मूवीज, then tell me. Instagram पर मिर्ची क्रिश, KRISH. This is मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Burga, burga. Burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Kumar.
2: Yeah.
3: Hello, sir. How are you?
2: Fine.
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप बता दो।
3: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट,
3: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो साढ़े 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार मैं मंडे ट्यूजडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूजडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूजडे किसी कितने बजे सर, ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे सर,
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
3: सर, संडे 3 बजे दिन में सर। मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
3: पहले अपना ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द

की बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भरतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच। मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है। अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। नंबर पांच पर थी तलाश द आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी। अब आते हैं नंबर थ्री पर, कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है। सब जगह डेड एंड दिखता है लेकिन एट द एंड क्या होता है। देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, सो गो एंड वॉच इट। फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। नाउ यू वांट टू मेक अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, ब्रिंग सम ग्रेट एक्टर्स टुगेदर और फिर कमाल देखो। ये मूवी वही कमाल करती है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड पियानो प्लेयर है बट ही कैन एक्चुअली सी और फिर वो एक वेब ऑफ मर्डर में फंसते ही जाते हैं। अगेन इस मूवी को स्पेशल बनाती है इस मूवी की जबरदस्त कास्ट। सो इन केस बाय चांस वंस इन अ रेयर मोमेंट्स आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो, मजा आएगा। बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम देयर, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा, ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफ कोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हेंस दिस मूवी डिजर्व्स द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची एट्स हार्ट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: So we all know what happened recently जब कैटरीना कैफ को ट्रोल किया गया। काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में आए, जिसकी शुरुआत खुद भाई ने करी थी अपनी टी शर्ट उतार के इन वन ऑफ बिग बॉसेस एपिसोड्स। मिर्ची सुन रहे हो, मेरा नाम क्रिश है। लेकिन अभी रिसेंटली समीरा रेड्डी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। उसमें उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोज का मॉन्टाज डाला एंड शी रोट कि बॉडी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो, चाहे यंग टीन हो, चाहे एक न्यू मदर हो, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत जरूरी है। ट्रोल्स तो देखो जो भी हैं कहते रहेंगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या ही होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ट्रोल आर सो बैड। और इसी के साथ साथ एक पोस्ट ये भी मैंने देखा एंड आई हैव टू क्रॉस चेक इट कि विवेक ओबरॉय ने भी शायद इसके बारे में बात करी है कि भाई सही कह रहे हैं, ट्रोलिंग एक बुरी चीज है। विवेक ओबरॉय तो अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं भाई का। इट्स रियली गुड टू सी दैट। बट एनीवेज, द पोस्ट वाज गुड बाय समीरा रेड्डी। हैव यू सीन इट? गो एंड चेक इट आउट यार। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इट्स हॉट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। वेल, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के ना बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर, ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
4: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है?
3: सर ये वाला भेज दें। बीप।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दे सर, ये वाला। बीप।
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
5: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे? बीप।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
5: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
4: लास्ट। ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
5: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप।
4: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
5: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है। बीप।
4: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
5: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर। बीप।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
5: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप।
4: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
5: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
4: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
4: अबे ओ पागल मार, ये क्या कर रही है? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पागल
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: On 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, he never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? She said कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

माधुरी दीक्षित सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही है। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हम में से कौन टिकेगा? इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू यू नो बिग फिल्म्स, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मेनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची। हेलो
2: मिस्टर कुमार।
1: या
2: हेलो सर, हाउ आर यू?
1: फाइन फाइन फाइन।
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता दो।
2: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो साढ़े 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी, एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वाज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी। एंड वॉट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा
0: सुनो तो मोना सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: muskeraj.
1: Pelezena a muskeraj. Pelezena a
2: muskeraj. विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपियरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, kisi countdown ki ranking ke bare mein koi sawal, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 gaanon ke countdown mein ek nayi entry hai. Show par hum apna 90s and 2000 ka indie pop classic bajane wale hain. Some special shout outs, all that and more. To seedha shuruaat karte hain hafte ke countdown ki with gaana number 10. Sanju Rathod ki awaaz की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना. 16 हफ्ते हो गए हैं इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा।
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी

0: ठीक बोल रही है, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच में देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा।
1: अब नविद आप बोलो आज कुकड़ू को।
0: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
2: मिर्ची मुर्गा नविद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज अ गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे, यू विल बी लाइक, ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोस क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ, व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक, यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नई, दो नई, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार आ रहा है। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, अ हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा हैंडल इज एट आरजे कनिका। ना सितंबर जा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, एंड आई एम श्योर आपने तो नोटिस कर ही लिया दैट मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला सिग्नल ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है, मे बी आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सेम ट्रैफिक, सेम काम, सेम फोन कॉल्स, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वी आर रियली excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है। Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि।
2: शाम तन्हा सी लगे।
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग जहाँ पर आपको लगा है कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में, दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

I actually have no words for how this song makes me feel. What a beautiful composition. That was Sham Tanha by Agni. At RJ Kanek on Instagram par, please aao, mujhe batao aisa kaun sa gaana hai जिसमें शाम आपका मेन कैरेक्टर है. मैं ऑनेस्टली ये गाना अपने हर दोस्त को रेकमेंड करती हूँ. शाम तन्हा बाय अग्नि इज माय रेकमेंडेशन फॉर यू. यू सेंड मी योर्स. गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलेगा. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ डबल वैमी बाय बंजारे बिकॉज उनका नया गाना बरसात 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10 Bandiga Rao hai RJ Kanika. This is the show jam hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani hai, bindaas aake hit me up. I truly, really believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Tabhi toh, it's time for what we call हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
3: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
2: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
2: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार, बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. इसकी मेलोडी में, राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन, वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं. उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना. आरुष, दिस वन इज फॉर यू. अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है. वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है. सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी. किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे. आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष. दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट. कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

एंड पहला प्यार पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्काय माय प्रोड्यूसर हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बाजरा हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अच्छा।

0: Mirchi.
1: Isca bana, pusca bana, saca bana. Rambana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Kumar.
2: Yeah.
3: Hello, sir. How are you?
2: Fine, fine, fine.
3: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
2: नहीं, आप बता
3: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
2: रिगार्डिंग व्हाट?
3: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
2: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
3: सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
2: हाँ
3: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
2: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
3: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
2: हाँ मिलते हैं।
3: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन यार टाइम बता दो आप प्लीज।
2: देखो यार, मैं मंडे ट्यूजडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूजडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
3: मैं ट्यूजडे किसे कितने बजे सर, ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
2: 7 बजे
3: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
2: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
3: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
2: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
3: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
2: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताएंगे।
3: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: शाम शानदार, लेट्स गो नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
8: एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए इसी का एक गाना है सलामे इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारी सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए सलामे इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब जमाना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामी इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है, इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का तेनू लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनू मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: या कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली रेसिपी बनानी हो और इंडिया अगर फोन करो मम्मी से रेसिपी पूछने के लिए तो मेजरमेंट्स कभी भी कप में नहीं मिलते। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देसी रेसिपी का फेवरेट मेजरमेंट होता है यार अपने अंदाज से कर लो, मतलब अगर पूछो ना कि कितना पानी तो बोलते बस थोड़ा, और यार थोड़ा मतलब बस कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए उतना, और फ्लावर तो यार जितना मन करे उतना। तो अगर आप न्यूजर्सी से किचन से मम्मी को फोन पे स्पीकर में रख रहे हो तो समझ जाओ कि आप ऑलरेडी एक डिटेक्टिव बन चुके हो, क्योंकि यार वही तो मजे की बात है। क्योंकि जो फैमिली रेसिपीज होती है ना वो कभी रिटन इंस्ट्रक्शंस के साथ नहीं होती, स्लोली स्लोली इनहेरिट होती है। मतलब राइस फ्लावर निकले तो किसी के घर में डोसा या अप्पम याद आएगा, किसी के घर में चकली तो किसी के घर में फेस्टिवल स्नैक्स। रेसिपी अलग हो सकती है लेकिन फोन की दूसरी तरफ वाली आवाज एकदम सेम होती है, जो कहती रहती है कि हाँ यार करते रहो सब सही लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो फैमिली रेसिपी रिक्रिएट करनी हो तो पेंट्री में हीरो रेडी रखना डीप राइस फ्लावर। और आज ही डीप राइस फ्लावर ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। यार बाकी मेजरमेंट अंदाज से मिल ही जाएगा, क्योंकि डीप खाओ तो जानो। तो चलिए रेसिपी मम्मी की, किचन आपका, और साउंड ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा,

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलाम इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशन इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज। और गोविंदा के डांस मूव्स मतलब दे वर किलिंग इट, कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज। और गोविंदा के डांस मूव्स मतलब दे वर किलिंग it, they were totally killing it, so very

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
2: लास्ट। ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई

0: भेज दिया।
1: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
0: अब ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: दोस्तों, हर दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। वेलकम टू योर रेजिडेंशियल मॉर्गेज मार्केट अपडेट। फॉर मोस्ट पीपल ओनिंग अ होम इज लाइक मूविंग अ स्टेप अप द अमेरिकन ड्रीम लैडर। इट इज इंडेड वाइज ऑफ यू टू बाय अ होम इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू पे हेफ्टी रेंट। Your home is an excellent investment in the long run because it helps you not only build up an equity, but also garner substantial tax breaks. There are certain deductions that can be claimed by homeowners only, and consider this deduction as Uncle Sam's gift to you. So listeners buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.75%. 20-year fixed mortgage rate, 6.625%. 15-year fixed mortgage rate, 6.375%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Mortgage rates go up and down. Inflation goes up and down. It is never a showstopper for those who are seriously looking to buy a home. And always remember, when mortgage rates are higher, buyers have more room for negotiation. And in future, when rate goes down, you have the opportunity to refinance your loan to a lower rate. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So friends, for all your mortgage needs, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: Tera kya hoga, Kalia?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
2: Ab, mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.
5: Sham Sardar, let's do non-donkey, have a funky time.
0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलामे इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH। क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
4: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 9549188589.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: This October,
8: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों के जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virba la burka.
2: हेलो,
3: मैं डॉक्टर सविता से बात कर रही हूँ।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर, ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, कभी लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
2: हूँ।
4: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
13: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
18: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
17: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
19: This October,
3: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
4: Beta,
0: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
20: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
21: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
22: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
21: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
22: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
21: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
23: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
24: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
25: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
26: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
27: बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौटकर तो कभी दूर रहकर भी हर जरूरत का ख्याल रख के, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना, और इसीलिए टैप टैप सेंड यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट्स और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर. कॉल 7323666777.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
10: ने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Ehlawat and many others.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
9: Released by Zee Studios nationwide.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
16: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
15: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
17: Sham Shandar, let's do non-tunky, have a funky time.
18: घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो OTT चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है. हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहां भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं. क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं. मतलब यार, एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से तीन कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन. लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप OTT पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो, या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSuddhi. और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं. अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
15: एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है, और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इश्यू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स, और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी किसी एक्टर को देख के लगता है कि यार ये एक्टर तो हर जगह है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ओटीटी दुनिया का ना अलग ही मजा है। एक हफ्ते ये कोई एक्टर थ्रिलर में दिख जाता है तो अगले हफ्ते कॉमेडी में, और फिर किसी दूसरी सीरीज में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर होता है। जैसे अभिषेक बैनर्जी को ही देख लीजिए, कभी एक सीरियस रोल में आपको डरा देते हैं तो कभी कॉमेडी से हंसा देते हैं, तो कभी इतना डिफरेंट कैरेक्टर निभाते हैं कि 2 मिनट बाद याद आता है कि अरे ये तो वही एक्टर है। तब समझ आता है कि असली एक्टिंग ना सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, हर बार अपनी पहचान छुपाना भी होता है और नई पहचान को अपनाना भी होता है। और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम देखते ही लगता है कि अच्छा, इनको देख लिया अब तो कहानी में दम होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि ऐसे कौन से एक्टर है जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो हर जगह है और अब कहानी में तो दम होने वाला है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब मिलते हैं ऐसे बॉलीवुड गाने से जो हर मूड में बिल्कुल नेचुरली फिट हो जाता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ¡No vienes para la murga! ¡Michi Murga!
1: Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: दो। तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
1: हाँ।
2: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे सर,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
2: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Inefficient.
6: Very complex.
7: Clumsy hoy.
8: Confusion.
5: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
13: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
10: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
14: ओह नो,
15: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Tera kya hoga Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
18: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: Listener MA, back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: 92.7
17: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

टाइम पास करना भी एक आर्ट होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी एंटरटेनमेंट बना देते हैं। मतलब सोचिए ना, वेटिंग रूम में, ग्रोसरी लाइन हो या किसी को पिक करने जाना हो, और सडनली 15 मिनट फ्री मिल जाते हैं। तो कोई रील्स खोलता है, कोई पीपल वॉचिंग शुरू करता है, कोई रैंडम ओल्ड फोटोज देखने लगता है, और कुछ लोग तो यार गाड़ी में बैठ कर ही फुल बॉलीवुड कॉन्सर्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हर इंसान का ना अपना सिग्नेचर टाइम पास होता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपका जीरो बजट इंस्टेंट टाइम पास क्या है? म्यूजिक, चाय, पीपल वॉचिंग या बस रील स्क्रोलिंग? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए आज के टाइम पास को थोड़ा क्लास दे देते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड ट्रैक के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
3: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: नवरात एक स्पिरिट
7: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्का टवे मा
6: रमो गरबा डेली 11-19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી
7: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી વિઝિટ gayatricenter.org ટુડે
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
11: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट @rjmirchisiddhi SIDDHI, और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।